कोई हो जाए नहीं। जिन्हें प्रभु दा नाम लिया होवे तिना करया होवे। जापहीन तपहीन कुलहीन कर्महीन सतगुरु किड़ियां बख्शां कर रहे हैं, नाम दी वड्याई कर रहे हैं।

दिन बीतया रात बीती फिर दिन आया उस मालक दी बख्शिश होई आज इस जंगल दे विचों ब्रह्मा दे पुत्र श्री नारद जी लंघ रहे ने अचानक बच्चे वल निगाह पई आखन लगे ओए बच्चिया इना उदास ते नाराज क्यों बैठा है प्रभु दा नाम जपया कर प्रभु दा नाम जपण दे नाल सारे दुख ते भुखा दूर हो जांदे ने राम राम जपया कर राम नाम जपण दे नाल संसारी दुख ते भुखा सारियां ही मुक जांदियां ने अनार दी इनी गल करके तुर गए ने बच्चे ने कन्ना नाल सुनिया ते हिरदे विच बसा लिया सिमरन विच जुड़ गया ते की सोची मिलती है किन्ने ही महीने उस प्रभु दे सिमरन विच बैठा रहा राम राम दी जाग सवासा नाल जुड़ गई किन्ने महीने बैठा रहा अज किन्ने महीनिया बाद इस दियां अखां खुलियां ते देखो नाम दियां बरकतां की तक रहा है इस दे हाथ ते पैर ठीक हो गए हुण ते पिंगला नहीं दे रहा अजदों इसने कुछ तकिया ना ए प्रभु तू किड्डा दयालु तू किड्डा कृपालु सुनिया सी तू रहमतां दा मुजस्मा है अज ते तेरियां बख्शां अज ते तेरे

जेदे पले नाम है दुनिया दे सुख ओदे मगर मगर टुरे फिरदे ने। सतगुरु बाणी विच आख रहे ने लोक परलोक दे सुख ओदे मगर टुर पैंदे ने जेड़ा हिरदे विच नाम बसाउंदा है। अज की होया राजा बिरद होया ते ए जवान होया राजे ने इस बच्चे नू राजगद्दी ते बिठा दिता है। जेड़ी दुनिया सारी इस दे नाल नफरत कर दी सी पिंड नगरी वाले भैन भरा जेड़े एडे धक्के मार दे सन अज सारे इस नू एक बार मिलन दी खातर दरवाजे ते खलोते तरले कर रहे ने। जिस नीच को कोई ना जाने नाम जपत ओ चौं कुंट माने। एवें ने बाबा जी ने बाणी विच आख्या नाम विच।

एक महापुरुष इस बरसात विच तुरे जा रहे ने ते की देख रहे ने और सामने एक घर दिस रहा है। बरसात तो बचन लई इस दरवाजे दे कोल जाके खलोते ने भी ये घर किसदा है बेसवादा है।

ते गनका नी दरवाजा खोलिया, बाबा जी अंदर लांग आओ, अंदर लांग आओ। महापुरुष दरवाजे विच खलोते नस के अंदर गए, सतपुरख आए ने सेवा कर लवा। नस के गई ते दूध का गिलास लेके आई, बाबा जी छक लगो। महापुरुष आखन लगे, बच्ची तेरा काम की है, की किरत कर दी है? बाबा जी मेरा धंधा बहुत माड़ा है, मैं कर्मा दी मारी बेसवा। आखन लगे, बच्ची आ तेरे हथां दा दुध असां ने नहीं पीना। इन्नी गलाखी ते गनका दे अखां विचों हंजू आए, क्यों नहीं पीना? तेरा कर्म माड़ा है, जे साड़ी एक गल मनेगी ते तां इह दुध दा गलास मैं पीवांगा। महापुरुष दुनिया नूं तारण वास्ते आंदे ने, बाबा जी तुहाडी हर एक गल मन्नांगी। महापुरशां दे कोल एक पिंजरे दे विच

इनू राम बोलेगी ई भी बोलेगा, इनू राम राम सिखाया कर, गल मनेगी। हाथ जोड़ के आखन लगी, बाबा जी इस तोते नू मैं राम राम सिखावा। महापुरुषां ने दुध सकिया, हुण महापुरुषां दे बचन तोते नू हर रोज राम राम सिखाउंदी है, हर रोज किन्ना चिर राम राम करदी है। ते एक दिन इहो जिहां बख्शां होईयां, राम नाम इहो जिहा इहदे सवासां नाल जुड़िया, तोते दा उधार ते होना ही सी, एदी रसना ते राम सदा वास्ते बस गया। हर वेले राम राम राम ते इतिहास विचों सोझी मिलदी है, एडी बड़ी पापण ते राम नाम दियां बख्शां गई स्वर्गां। राम नाम ने तार दिता, लोक परलोक सवार दिते, स्वर्गां दे दरवाजे इस लई सदा वास्ते खुल गए। ते ए है प्रभु दे नाम दी महिमा, सतगुरु बाणी विच सोझी दे रहे ने। जप हीन तप हीन कुल हीन कर्म हीन, नामे के स्वामी ते उतरे। किड्डा भी गुनाहगार है तू, किड्डा भी पापी है, किड्डा भी कर्महीन है, प्रभु दा नाम जपेगा, राम नाम जपेगा, वाहेगुरु अल्लाह।

शीश दिया पर सिर ना दिया। सच जिस दे अंदर सच वस जाए वह सच नूं कुर्बान नहीं होण दिंदा, अपने आप नूं कुर्बान कर जाएगा। उसकी जमीर नूं कोई खरीद नहीं सकता, उसके ईमान नूं कोई डुला नहीं सकता। पितर बाणी च क्या है, जे सच दी छुरी होवे आखो वाहिगुरू, ते सच दे लोहे तो ही बनी होवे। मैं फिर बेनती करा, जे सच दी छुरी होवे सच की काती, ते सच दे लोहे तो ही बनी होवे, ते गुर शब्द दी साण ते तिखी कीती होवे आखो। फिर गल समझ ली, सच की छुरी होवे ते सच दे लोहे की बनी होवे, गुर शब्द दे साण ते तिखी कीती होवे, परमेश्वर जो बेअंत गुणा वाला है उसके गुणा की म्यान विच रखी होवे आखो वाहिगुरु। ऐसी सच की छुरी का काओ जे लग जाए ना, अंदरों लोभ रूपी खून बाहर कढ देंदा है आखो वाहिगुरु। उसके अंदर लोभ नहीं रहता। बाकी कुड़ियारन दिया छुरियां वेखियां ने, वो तो अंदर जहर भर दिया ने, अंदर ईरखा भर दिया ने, अंदर दुबदा भर दिया ने, पितर जीवन नू नरक बना दिया ने, अंदर जहर घोल दिया ने। उसके नाल तो मनुख आत्मक मौत मरदा है, जमीर विक जाती है, तकदीर विक जाती है आखो वाहिगुरु। जिसकी जमीर विक जाए समझो तकदीर विक गई आखो वाहिगुरु। अन्न ना खाइए शरीर मरदा है, नाम ना जपिए जमीर मरदी है, जिसकी जमीर मर जाए उसकी तकदीर मरदी है आखो वाहिगुरु। जे कोई अपनी तकदीर नूं बढ़ा सकता है तो जमीर उच्ची करके, जमीर उच्ची हो सकती है परमात्मा के नाम करके, सच करके आखो वाहिगुरु। कहिंदे जिन्हां दे अंदर सच दी छुरी सच की काती।

Anansada Bar Karke, Gitan di Smarti, Ardas Havegi Hukunama, Kraprasadi Veg, Bachiavalo, Kurmuk Parvarvalo, Jo Seva hai Ovi Parvan Karni, to Ahun, Anansada Bar, Sari Milke Kari, and Guru Nanak Padsha, Meherwan Sadguru. आप जी दे प्यार वाले गुरसिख माई भाई साहब जी जिन्हां नूं आरती ने बख्शिश करके ए दात बख्शी और आप जी दे दरबार ही जुड़ के आप जी दे बख्शियां खजाने विच सतगुरु आप जी दे पवित्र पावन शब्द दा आदर करदे हैं कीर्तन भेंट गाउण अरदास कराउंदे हैं अंतरजामी गुरु जी आप अपने गुरसिखां नूं बच्चे बच्चियां नामदान बख्शो कारोबार च वादे बख्शो सिखी जीवन सत्संग दी दात बख्शो

जब लौली भाग निदार उठे तब लौ भरते फिरते बहुत आयो कल खोर समुद्र में मूर्त थे कब हूं मिट है नीरे पछतायो तत् विचार यह मथुरा जगतार्न को अवतार बनायो जप्यो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ अनुगुरु नानक पातशाह अनुगुरु अर्जुन देव पातशाह जी का पवित्र पावन नाम रसना से लिया है और ने कोई संकट भी आएगा तो 84 लख जून तू बच जाएगा तो प्यार ना सारे आखो अनुगुरु अर्जुन देव गंगा जी असी गुरु की संगतं दे सेवादार पातशाह हुकुम करो हलू कह लगे गंगा जी फिर कड़ा प्रसाद ही देख पिया पर कड़ा प्रसाद ही दे उस आटे भी नहीं बनाए अज गुरु की संतां की सेवा करनी है अपने हथी पहला चक्की पीया दैवी गुणा वाली मां जगत माता माता गंगा जी अज गुरु की संतां वास्ते आप चक्की आटा तैयार किया फिर साहबा ने अपने हथी कड़ा प्रसाद की अमृत देख तैयार सोने थाल विच पाई उत्ते चिट्टा रुमाल पाया माता गंगा जी कह लगे पातशाह किसे सिख नू बुलाइए हजूर कह लगे नहीं गंगा जी असी आप ही अपने सिर पे संजय पातशाह जी कड़ा प्रसाद जी दे अपने पवित्र पावन शीश से रख चादर की हुकुम मारी तुरन लगे माता गंगा जी कह लगे पातशाह मैनू की हुक्म है हजूर कह लगे गंगा जी जी इस संतां की सेवा करनी तुसी भी ठंडे जल की गागर कर जिथे संगत नूं भुख लगी उसे प्यास तो माता गंगा जी ने सिर के उत्ते गागर जल की रख ली हजूर तुरन लगे कह लगे गंगा जी पखा भी नाल लै लो गर्मी बड़ी तुरिया जाते अज पंजवां गुरु नानक सुरती नाम सारे करो दर्शन से प्यार नाल की रखो तन रात दस गुरु तो यह जाता है सिखा ने दर्शन करो नदी तो रोज तुरती है समुद्र को मिलने वास्ते पर समुद्र कदे नहीं मिलता समुद्र कदे नहीं आता तक लो प्यारी सात सिंह नदी रूप सिखी जे गुरु के दर्शनों तुर पैंदी है जे कोई रुकावट पै जाती है तो गुरु आप ना उतर अद्धी रात दस गंगा जी सुनो ना मेरी सिखा के प्यार वाली आवाज भावें उन्होंने प्रशादा नहीं दे ठंडा जल किसी ने नहीं पिलाया पर फिर भी गुरु की संत प्यार किस तरह अरदास कर गंगा जी सुनो साहबा ने बरसित की माता गंगा जी कन्ना में प्यार की आवाज आ रही है केड़ी सारी संत रात का समय प्यार इज भी है ते अरदास कर रही है मेरा

तो सारी पढ़ती जाती मेरे सतगुरु जी दे दर्शन ते दर्शन देने वाला चादर की कुकड़ मार के पिछे पिछे अगर सोचते अगे होके कह दिए कर लो दर्शन फिर आप ही सोचा नहीं इन्होंने तो सानू प्रेमी सिख बनाया पिछे पिछे तुरे आने अपने बच्चों का प्यार वेख के जिस तरह मां खुश होती है मां कितना चाह चल जाता है गुरु को चाह चल पहुंच गए सारे कितने श्री अमृतसर साहब दर्शनी डेवी जथेदार लेके असार संघ जी सारे सावधान हो जोड़े इतने उतार दो हरिमंदर साहब जाके गुरु के दर्शन कर सारे ने जोड़े ला संगत अंदर जाए लगे जथेदार ने सोचा भी कोई जोड़े का राखा भी देना एक सिख न बुलाया लैवे सिखा हुक्म करो जथेदार भाई सारी संगत अंदर जाके गुरु के दर्शन करेगी तो तू उतना चिर इतने जोड़िया का रख तो इस प्रेमी ने सिख दे नेत्र पाया कह लगा जथेदार जी मैं इतने ना मैं चिरा भी आसा लाई बैठी कि कद भागा वाला दिन चढ़ेगा कद भागा वाली कड़ी आएगी जब मैं इन अखा के नाल गुरु के दर्शन कर मैनू ना दूजे सिख रुक गया एदिया भी भुब्बा निकल गई जथेदार जी मेरी अखा जो वास्तु मेरा चित करता है दो सच्चे मोती गुरु के चरणों से जाके मैनू ना मिठाओ मेरे मन की तो अवस्था है कहड़ी

नाम दिए हो, फिर आप बच्चा जोड़े ने रखा नहीं थे तो क्या विश्वास किया। अजय पाओ कुटीली साहब जी कह लगे गंगा जी जी बात है उसी का महिला नु जाओ, साई जी आप ही चलो, अगर कह लगे थोड़ी जी सेवा बाकी रह गई है वो भी कर दो। तो गुरु अर्जुन देव बादशाह संगत विचो नगदे नगदे नगदे जथेदार से कौन आके हो गया प्यार नाल किया जथेदार जी गुरु किया संगतान ने जोड़िया वास्ते सेवादार की लोड़ है ना दाल तक जथेदार हो सके कम और गुरु के सिखा एक ही वचन की तेन जोड़िया ना सेवादार बिठाइए नहीं नहीं तू अगे बड़ी सेवा की राति बड़ा प्रशादी दे चुकाया ठंडा जल पिलाया सारी रात पक्का करता रहे तू तो कोई धन गुरु अर्जुन देव पातशाह जी का पूर्व सिख है प्यारे तेन इतने नहीं बिठाना तेन नाल लेके चलेंगे ते गुरु की अरदास करांगे पातशाह पहली जी तेरे दर्शन करने वास्ते आए हैं और कुछ नहीं मंगते जो कुछ सिख नु दिता जो साड़ी चोरी तेरे सबके तो साढ़े गुनाह बख्शे जाए अलग कह लगी जथेदार जी मैनू इतने मजबूर किया तो प्यारी सास ने सारी संगत ने जोड़े उतार दिते संगत तो हरिमंदर साहब जा रही है तो जोड़िया का राखा कौन बैठा है प्यार ने आखो संगत अंदर पहुंच साहब श्री मुकुंद साहब जी के दर्शन होए पर पंजे पातशाह के दर्शन बाबे बुढ़े ने पूछा बाबा जी पंजे पातशाह कितने हम दर्शन करिए बाबे ने किया साहब संगत जी पंजे पातशाह का रात दे पितली साहब गए श्री अमृतसर साहब गुरुद्वारा पितली साहब जी दर्शन किए पुतली घर के कोले गुरुद्वारा स्थान इतिहासिक जो साखी पुतली साहब पुतली घर के नाल पितली साहब गुरुद्वारा ने कहा बाबा जी पितली साहब असी रात पिपली साहब रहे सानू तो गुरु के दर्शन नहीं हो क्योंकि संगत पहली दिन दर्शन करवाते गुरु की सौ सुन के दर्शन बाबे बुद्धे देखे नहीं राति श्री हरिमंदर साहब पहुंच पे 11 का टाइम साहब जी ने कहा सी बाबे यार गुरु दिया संगत दूरों उतर के आईया हर कुछ मिला ते उतारा किया गुरु की संगत भुखी देते मैं कहा सी पातशाह हुक्म करो जाके लंगर छका दे पर पंजे पातशाह मने नहीं कह लगे बाबे यार तू तो रोज गुरु की संगत की सेवा करता है अज इला सू ले रात दिन पितली साहब एक दूजे के मुंह वाल वेख खुल गए जथेदार ने कहा बाबा जी पंजे पातशाह तो नहीं गए सिख जरूर गया हूं एक प्रचार भी छकाया जल भी पिलाया पक्का भी करता रे बाबा बुद्धा जी कह लगे प्यारे और सिख नहीं सी सिखा का मालिक बाबा जी ये किस तरह हो सकता है तो बाबे ने क्या पता हूं से कितने बड़े निराश एक दूजे के मुंह वाल तके तो उदासी भी जाके कह लगे बाबे हूं तो जोड़िया का राखा बिठा के बाबे बुढ़े दिया पुपारिया और प्यारी सार संगत पंजे गुरु नानक जोड़िया का राखा बिठा बाबा बुढ़ा जी भजे जाए मगर संगत भी भजी जाए तो पहुंच गए इधर मेरे पंजे पातशाह की कर रहे हैं एक जोड़ा चुक लेते हैं उन्हों साफ कर देते हैं और धूल मथे दे देते किसी अगम भी खेड़े पढ़ते हैं

वीर रण तीर के गिरत पगरी धूम परी जगत में तुमरी चक्र चलत खंड खंड रुंड मुंड कर खंडा खड़क तुपक तबर महाजुत दुष दमन करे ब्रिज पाशा चक्र चलत खंड खंड रुंड मुंड कर खंडा खड़क तुपक तबर महाजुत दुष दमन करे गंधर्व अलमत के प्रभु की जग धूम परी डरत पई शिवपुरी पेख नंदपुरी आनंदपुरी वेख के ब्रह्मपुरी इंद्रपुरी शिवपुरी सारिया कंबदिया ने डरदिया ने चक्कर पकड़ा के इंद्र का दरबार के किस तरह दरीत नगारे ते चोटा वजिया ने इति नौबत इति तो भाव है बहुत ज्यादा नौबत तो भाव है नगारा हे सतगुरु पातशाह जी आप जी का जो रणजीत नगारा है इस तरह गरजदा है जिस तरह के काले बदलों के बिजली गरजती है ध्यान देना इति नौबत घाना ना ना घाना ना ना घाना ना ना घाना ना ना घनियर उत गरजे घनियर काले बदल इति नौबत घाना ना ना घाना ना ना घाना ना ना घनियर उत गरजे इति रुद्र सर चल उजात है जागर दी जल पर उत बरसे इतन कवि जस उचर रही है चात्रक चात्रक तू ही करे इंद्रत चक्रत पयो रहो है गुरु गोबिंद सिंह जबी जुरत पे चढ़े तो आओ ये तराना कह के दो तीन मिनट का है समाप्ति है।

मेहमान न जाने भेद, ब्रह्मा न जाने भेद, अवतार न जाने अंत, परमेश्वर